नाधान सुतानता मनुष्योमत प्रसादी न भविष्यति न संशया मंत्रार्था सकला संतु पूर्णा शब्द मुन्नता तत्त्वां बुद्धिना